सुख बसना शुरू हो जाएगा, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ओ नहीं कहे नानक। सुनो संतो की करो, केड़ा शब्द वाह गुरु तुहानू संत कहा वा, वाहगुरु के शब्द नाल प्यार पाओ, शब्द धरो प्यार, बस ये शब्द ने तुहानू पार लै जाना ते सारे रल के बोलो है ना, जिन्ना क बोल सकते हो नाल दे दी आवाज दे नाल रला दो, तो जिहड़े बहुत उच्ची बोलते थोड़ा स्लो कर लो है ना, इको जे रल जाओ सारे, सुरती सुरतर लाइए एत है ना, सारे एक दूजे नूं चैक कर लिया करो ते फिर तुसीं ये जहाज बनाओ बेड़ा, ते ये बेड़ा फिर तुहानू पार लै जाएगा सारे जिथे। फिर अज उन्होंने सानू नाम दिता है, मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, अकाल पुरख दे हाथ वो चरण सानू मिल जाने नाम, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के केलविक दुख उतरे, गुरनाम दियो रिण लाथा, अंदरों नाम सुन लग पैण, ठीक है ना, चरण भी कहा सामन सरसी कामणी, चरण कमल कहा नाम, प्यार पै जाएगा, मन तंदरता सच रंग, इको नाम दा यह बिखिया जड़ी खत्म हो जाएगी, इन बिखिया क्या सोचा नू, बिखिया रंग कुड़ाव्या दिसन शब, हर अमृत बूंद सुहावनी, आ पी के वेखो तुसी साधुआं च बह के, मिल साधु पीवन हार, जे मन ने सुन लिया फिर पीऊगा, जे बोल के सुनिया ना फिर नहीं पींदा, फिर तो जहर ही पी जांदा अंदर सोचा ही, आओ वेखीए भला तजर्बा करके, इनू अमृत पियाइए, तुसी सारे साधु बैठे हो तां ही साध संग कहिंदे आ ना, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार, वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

या तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया सो उदार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दार तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे बावन हारे केते तेरे राग परी स्यों कहिया है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनु पवन पानी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनु चित गुपत लिख जानन

पंडित पढ़नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन सुर्ग मछ पयाले गावन तुदनु रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले।

अद सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरगमा अगम अपारा सब त्यावै तुत जी।

चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम गावो, आप हा दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करें, सब बैरण को आसंग रहें, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबर है, मरण काल का त्रास निभर है, उजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझु करे हो रक्षा। राख लियो मैं राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी सेव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु सम जेव हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजाजन आप सवारी। सेवगन को सेवगन सुख दियो, सत्रण को बल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर बशानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सबर कृपा दुष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुही। एक एक ही पीर बशन, घट घट के बट बट की जन। जब तक

सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता। केलबिक सकल देहे को हरता, दुष्ट दुखियन को शाय करता।

प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू नैतियाऊ कान सुनै पहचान न तनसाओ लिव लागी मोरी पग इनसाओ।

तो है। अपना जान करो भरत पारा, तुम साहे मैं किंग कर थारा, दा जान दे हाथ उबारो, अमरे सा बैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुर करो कविता बिदनाना, किशन जथा मत चरित्र उचारो, चूको कबले हो सुधारो, कबिवाय दोहरा, जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कहे हो जग माहे, ज्योते प्रभु को त्याए है, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जन द्वी एक है, बिबिचार कश नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे दोहरा, जब आए स प्रभु को पयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते, सब हूँ कहत सुनाए, कबे बाच दोहरा, ठाड पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न आए, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पामेंगे भगवंत दोहरा, काल पुरख की देह मो, कोटक विष्ण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, राव सस क्रूर जलेश दोहरा, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत, सुर्गबास रघुबर कर, सगरी पुरी समेत चौपाई, जो ए कथा सुने अर गावे, दुख पाप तह निकट न आवे, मिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद शब सके न कोई, सम्मत सत्रह सहस पचावन,

के चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कऊ आंख तरे नहीं आने हो।

मणि चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिख्या रंग कुड़ाविया दिसन सबे शार, हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पी वणहार। वण तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार, हर मिलने नौ मन लोचदा कर्म मिला वणहार। जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनका सद बलहार, नानक हर जी मया कर शब

इतनी सेवा प्रवान करने की कीर्तन कर दिया बोला दी माफी बख्शनी अज बंदे महान शहीद जिन्हों ने सिखी केसा सुवासा संग निभाई केस नहीं कतल होन दिते केस नहीं कटाए पर साडा सिखां दा अज की हाल है जी कि अपने आप सादे छाती मारीए यह सिखी है जो सिखा केसा दे नाल है सिखी केसा तो बगैर सिख नहीं है अज ओ महान शहीदा शहीदी दिहाड़ा है जी शहीद भाई तारू सिंह जी इस संबंध वन साजरे हैं अते नाल ही सावण का महीना प्रारंभ होया हुण इस संबंध कथा राही पाई साहब गुरजंड सिंह जी पटियाले वाले आप जी नूं कथा राही जोड़नगे उन्हां पासों प्यार का सरण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु जी, थोड़ा बेस कर दो जा। वाहेगुरु वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु।
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

प्रभ कह सिमरन दसमंटर है, प्रभ सिमरत कस बिगल ना लागे, प्रभ कह सिमरन अंदन जागे, प्रभ कह सिमरन पाओ ना बेआपे, प्रभ कह सिमरन दुख ना संतापे, प्रभ का सिमरन साध कै संग सरबन दान नानक हरे रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाव निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थे सनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते उचा, प्रभ कै सिमरन उदरै मूचा, प्रभ कै सिमरन त्रिसना बुझै, प्रभ कै सिमरन सब कै सुजै,

गावे। जिह मार्ग एह जाते अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आइये नानक गुरुमुख परम गत पाइये।

संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्ध वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु सात्र बहु स्मृति पेखे सर्व टडोल पूरस नाही हर हरे नानक नामे अबोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ सावत्र सिमरत बख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया।

माया मिथ्या राज जोबन धनमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रात हस्ती असव बहद्रा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या से ऊपर कर्त गुमान अस्थिर भक्त साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण।

मोह बिन सजाए हमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति है अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे।

आठ पहर सिम रहो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ते आई है ध्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ परम रंधावे तिसे त्याग का तवर लुभावे जिह प्रसाद सुख से सोई जिह मन आठ पहर ताका जास गा विजय जिह प्रसाद तुझ सब को माने मुख ताको जास रसन बखाने जिह प्रसाद तेरे रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जबत दरगह मान पावे नानक पासे ती कर जावे जिह प्रसाद अरो कंचन देही लेव लाव तिस राम स्नेही जिह प्रसाद रवोला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जिह प्रसाद रे सगल सिद्र ढाक

के अंदर ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पाव का से सुपाहु ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जय से मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगाह जय तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही महान ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सबते नीचा

ब्रह्म पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृह ते अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी सुमाह ब्रह्म ज्ञानी पारकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कहो हे सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार

ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की का तो ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम तन पार नान, ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जी वह नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

प्रकार अष्टपदी कई कोट होए बजारी कई कोट चार बिहारी कई कोट पैतीथ वासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

कई कोड़ पर दर्भ को हिर है, कई कोड़ पर दुख न कर है, कई कोड़ माया श्रम माह, कई कोड़ प्रदेश प्रमा है। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोड़ सिद्ध जति जोगी, कई कोड़ राज रस भोगी, कई कोड़ पंखी सर पे उपाय, कई कोड़ पाथर वृक्ष निभाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र।

प्रभु अविनाश। कई कोड मांग सात संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कहो हे आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तहन तहने।

तड़फड़ाए। संतगा दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक इंद्र नहीं त्रापे। संतगा दुखी छुटे इकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला। संतगा दुखी धर्म तेरा तह, संतगा दुखी सदमिथया कह तह। कीर्तन का तुर ही पया, नानक जो तिह पावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ूप हो जाए, संत के दुखी को दर के मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेव कहो किस ते डरे जैसा सात ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधित सोधित सोधित सीजया गुर प्रसाद तत् सब बूझया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुख में सोई।

पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक के आव नहीं कह परम सह सियाण पलाया न जाइए नान कैसा गुर बड़ भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गात निर्मल रीत पेटत

करो उधार। अमृत बदन हर के गुण गाव, प्राण तरन गाय सुहाव। आठ पहर प्रभु खोने राम, मिटे अज्ञान मिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय सब मन, छे नान फल पावो। हलत पल दो लेह सवार, राम नामे अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखया, जिस मन बसे ते साज प्रीख्या।

सब धर्म संत जना सुनह सोब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिह की यह रहत सत बिन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्राव जाने।

जन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पद स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हो।

असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूरम भक सार, असंख मोल लिवलाए तार, कुदरत गवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, ज्योतत भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वढत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक

मनगल प्रणाम निर्भय निकाम प्रचंड अखंडाल सहकर्मा दस त्रम सर्वा प्रनाढ़ अनडंड बाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नृनामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दान चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न गाय अजन्मंग अजाय न चित्रे न मित्रे परे है पवित्रे प्रतिशय दिशा दृश्य कृश भगवती छंद त्वा प्रसाद कथते किया शुज देश गया बिज बेसा गया गंज करमे गया भज भरमे गया बिज लोके गया आदत सुख के अवधूत भरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है धर्मंग तुझा है क्या सुख भरने के सर्वा अभरने के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के

लखराज है, नरक स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुदा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनुभ समस्त अपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव अकाम है, दरभा स्वरूप है, अगाध है, अनुप है, ओंगाद रूपे ना स्वरूप है, रंगी नाम है, त्रिभंगी त्रिकाम है, त्रिवर्गम दरभादे अगंजे अदा अगाधे सुसर्वंग सुसर्वंग सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वा अनुरागे त्रिभग स्वरूप है, छिज है, श्रोत के नरकंग प्रणास है, प्रथुल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक् स्वरूप है, प्रजुक्त अनुप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुस्वरूप है, प्रजुक्त अनुप है, चाचरी छंद

अठाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, सनत्य अनित्य है, सुनित्य है, आजाद है, अजाद है, चरपट शांत प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं घंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तरांग, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं ज्योता, सर्वं मुक्ता, रसाबल शांत त्वा प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुप

नहात फिर बोलिए सास समंदर लोग परलोक गवायो बास की अभिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह से बितायो साज गल सुन लो सबह जिन प्रेम क्यों तिनी प्रपायो काहू लै पाहन पूज तरह सिर काहू लै लिंग करी रटकायो काहू लखर वाची दि शाह मैं कहू पशाह को शीस निवायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को वेदना भायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को वेदना पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी।

न मारिए, देह काले घर न तवे न उपचारिए, ऐसी कला न खेडिए जित दरग गया हारिए, पड़िया क्यों मिया विचार के विचारिए, मोह चल सो के मारिए मोह चल।

फौड़ चितेंद्र सब को एक नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ियां आपे कर्म कराइंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदरी सिर सिर धंधा लाइंदा नदरू पठी जय कर सुल्ताना का कराइंदा दर मंगण पेखना पाइंदा दर

महाराज जी अगे वचन करते ने, जो मंग है सोई सोई पाव है, सेव हर के चरण रसायण। रस और आयन दो शब्दों नु जोड़ के शब्द रसायण बनया, संस्कृत दे वर्ड तो शब्द तो। सो महाराज जी कहते जेडे वाहेगुरु के चरण ने ना, उन्हां दे करके साडे अंदर आत्म रस प्रगट हुंदा। आत्म आनंद दे सानू ओ देण वाले ने।

ऐसा नाम सिमरिया कर हकु सतनाम श्री वाहे। अज दे शब्द अंदर महाराज साहब जी ने शब्द की महानता दसी और यह भी दसिया जपना किवें है, भांडा किवें तैयार करना, भांडे च वस्त किवें पाउणी है। अध्यात्म वस्तु किसी का पिता पुरखी अधिकार जां कर्तव्य नहीं हुंदा। कोई कहे भी मेरा अध्यात्म वस्तु ते वाहिगुरु दे नाम ते भजन ते बंदगी ते पिता पुरखी अधिकार है, हक है, मैनू वो हक मिलना चाहिए। महाराज जी कहिंदे इत्थे किसी का अधिकार नहीं, इस सरबत दे भले लई आई है भाई बाणी। वाहिगुरु का सिमरन ये सरबत दे भले लई

मात पिता हम बारिक दे रे तुमरी कृपा मैं सुख कन्हे कोई न जाने तुमरा अंतर

पड़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोच है।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मर बजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बढ़िया शब्द ता गाबो हरि केरा मन जनी वसाया

ताव बेखम नदी जाय तरणी सुकह टल गुर सेवी एहन सुसहज सुपाए दर्शन परस्यां गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दे नुरे अर्शों कुरसों चटियां तुद डिठे सच्चे पातशाह

अकाल मूरत अजुने सैपंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच।

उपाय करी जेति सिरठ उपाय वेखा विणकर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर के सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलाए सब कोए चंगा नाव रखाई कै जस कीरत जागले जे तिस नजर ना आवै ता बात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे तेहा

मूढ़े माया पेश तो सगल कलतर माता तिर होए न अंत सखाया रहा वो बिखे बिखा दुष्ट किरखा करे इनता जात में होए त्याई जब तब संजय होए जब राखे कमल बिकसे मदास्त्र माई।

जिनी सतगुरु सेविया तिनी पाया नाम निधान अंतर हर रस रब रहिया चूका मन अभिमान हिरदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रब रहिया पाया दर गए मान।

निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थकै, मैल न छकी धोए। राहाओ मन मैले भगत न होवे, नाम न पाया जाए। मनमुख मैले मैले मुए, जासन पत गवाए। गुरु प्रसादी मन वसै, मल होमे जाए समाए। ज्यों अंधेरे दीपक बालिए, त्यों त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए। हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गावार। करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार। माया जीवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार। गुरमती सुख पाइए, सच नाम उरतार। जिस नौ मेले सो मिले, हों तिस बलिहारे जाओ। ई मन भगती रत्या, सच बाणी निज थाओ। मन रत्ते जिहबा रती, हर गुण सच्चे गाओ।

बिन साधु संगत रत्या माया मोह संसार मेरे साजन हार हार नाम समाल। साधु संगत मन बसे पूर्ण होवे काल रहाओ, गुर समरथ पार करो बड़ पागी।

मन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सत बलहारे जास चौंजुग मैले मल परे जिन मुखे नाम ना हुए भगते पाए बिहूणिया मूह काला पत खोए जिन्ने नाम विसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मलाए आप पिछाने कर वसै हौमे तिसना जाए।

पत सबास तिस तिसका संग मलाऊ तिस बिन कड़ी ना जीवेऊ बिन नामे मर जाऊ मैं अंधले नाम ना विसरै टेक टिक।

आए गया पछतावना, ज्यों सुंजे कर काओ बिन्ना में दुख दियोरी, ज्यों कलर की पीते तब लग महल ना पाइए, जब लग साच न चीत शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पद नीत। हों गुर पुछो अपने गुर पुछकार कमाओ, शब्द सलाही मन बसे हों में दुख जल जाओ। सहजे हुए मलावड़ा साचे सच मलाओ, शब्द रते से निर्मले ताजे काम करोद हंकारी। नाम सलाहन सदा सदा हरे राखे उरतारे, सो क्यों मनो बिसारी है सब जी का आधारे। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वारी, शब्दे ही ते पाईया हर नामे लगे प्यार। बिन शब्दे जग भूला फिरे मर जन्मे वारू वार, सब सलाहे आपको बड़ो वडेरी होए। गुर बिने आप ना चीनिया कहे सुने क्या हुए, नानके शब्द पिछाणिया हों में करे न कोई। श्री रागे महला पहला बिन पिरे तन सिगारी है, जो बनवाद खुवारी ना माने सुख से जड़ी। बिन पिर बाद सिगारी दुख कणो दो हागणी, ना कर से जपतारी मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहो, गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगारी। सच माने पिर

कारिकमावी सच की लाहा मिले रजाई पूंजी सच गुरु मिले ना तिस तिल न तमाई गुरमुख तोल तोलाई सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाई तोल सी पूरे पूरा तोल कथने कहन न छूटी है ना पढ़ पुस्तक पारी काया सोच ना पाई है बिन हरे भगत प्यारी नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतारी श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन बिचारी मन दी जे गुरे अपने पाईए सर्ब प्यार मुक्त पद

मिले मलाए, नानक नाम ना विसरै, ज्यो पावे तिवें चेर जाए। सिराग महला पहला, राम नाम मन बेदिया, अवर के करी विचारे, शब्द सुरत सुखे उपजे, प्रभ रात्यों सुख सारे। ज्यो पावे तू रह रख तू, मैं हर नाम आधार, मन मरे साची खसम रजाए, जिन तन मन साच सोगारिया, तिसे ती लिवलाई रहो। तन बसंतर होमिया, एक रत्ती तोल कटाई, तन मन समदा जे करे, आन दिन अगन जलाए। हर नामे तुल ना पूजे, जेला कोटी कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाई, सिर करवत तराए।

तिनके संग सदा सुख पाया, हर स्नानक त्रिपत अघाना जियो माज महला पंजमा। तू जल निध हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिख हारे। तुमरी प्यास तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारक पी खीर अघावै, ज्यो निरतन धन देख सुख पावै। तिरखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग एह मन भीना जियो। ज्यो अंधकारै ज्यो अंधारै दीप प्रगासा, ज्यो अंधारै दीपक प्रगासा। परता चितवद पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा। त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोको हर मार्ग पाया। साध किरपाल हर रंग हर संग गिझाया, हर हरा हर हमरा हम हर के दासे। नानक शब्द गुरु सच दीना जियो, माज महला पंजमा। अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे, मन हर सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै, अमर होवै सो नाम रस पावै। नाम धन तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना। तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पा गीठा जियो। हर एक सत आया बरसाने बहुतेरे, तिस लग मुकत भय कनेरे। नाम निधाना गुरमुख पाईऐ, कहो नानक बिरली डीठा जियो, माज महला पंजमा। निध सिद्ध रिध हर हर हर मेरै, जन्म पदार्थ गहर गंभीरै। लाख कोट खुशियां रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत भय पनीता, सगल उधारे पाई मीता। अगम गुचर स्वामी अपना, गुर किरपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजे सर्व उपाए, बड़पागी दर्शन को बिरला पाए। ऊच अपार अगोचर थाना, ओ मैल गुरु देखाई जियो। गहर गभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त प्याज सिरदे बसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजमा। कर प्रभु किरपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोबत जागत, हर त्याई सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलवे काटे निर्मल थिया। अनद पया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेटत हो गई बुलाए। सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पड़दा जियो, माज महला पंजमा। ओत पोत सेवक संगराता, प्रभु प्रतपाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसो सेवक के, ठाकुर ही का आहर जियो। काट सिल्क प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सबिद जानै, ठाकुर के सेवक हर रंग माणै। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहरना लेखा पुछ बलाया। तिस सेवक के नानक कुर्बाणी, सो गहर गंभीर गौहर जियो, माज महला पंजमा। सब किछ के कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम बरसे अमृत तारा, मन पीवै सुन शब्द बिचारा। अनद बनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध किरपा ते सूका हरिया। सुमत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मिला जियो। जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक भ्रम कटे के वाड़ा, बहुर ना हुईए जौला जियो, माज महला पंजमा। तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना भणिया। वार वार जाई तिस विटों, जो मन तुम तुद अराधे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चालै, नैन निहाली तिस पुरख दयालै। मन देमा तिस अपने साजन, जिन गुर मिलसो प्रभ लादे जियो।
ਸੇਬੜ ਪਾਗੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੇ ਮਦੇ ਲਿਪਤ ਨਿਰਬਾਣੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਉਨ ਭਉ ਜਲ ਤਰਿਆ ਸਗਲ ਦੂਤ ਉਨ ਸਾਧੇ ਜੀਓ ਤਿਨਕੀ ਸਰਣ ਪਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਜੇ ਨਾਨਕੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲੀ ਤੂੰ ਸੁਖਮ ਹੁਆ ਅਸਥੂਲੀ ਤੂੰ ਜਲ ਨੇ ਤੂੰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਤੁਦ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸੂਤ ਮਣੀਏ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਗੰਠੀ ਮੇਰ ਸਿਰ ਤੂੰ ਹੈ ਆਦਿ ਮੰਤ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਲੀਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਰਬਾਣ ਰਸੀਆ ਰੰਗਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਤੁਦ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਫੁਨ ਆਪੇ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਫਲ ਸੁਬਾਣੀ ਜਿਤ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀ ਧਨ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗਾਵਤ ਸੁਣਨਾ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀਓ ਸੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਾ ਸੇ ਕਰ ਭਲੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਜਸ ਲੇਖਾ ਸੇ ਚਰਨ ਸੁਹਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਹਉ ਬਲ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਪਛਾਣਾ ਜੀਓ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੇ ਕਿਲਵੀ ਕਾਟ ਹੋਆ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਿਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੀਓ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਕਰੀਜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁੱਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸੁਖ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪੁਰਾਨਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀਓ ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲਾ ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਜੀਓ ਬਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕੀ ਤੋਨ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਕਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੂਜਾਏ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਜਿਤ ਜਿਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਲਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਜੇ ਵਧਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਪ੍ਰਭ ਮਨੇ ਅਧਾਰਾ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਨਾਮਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਧਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਕਰਤੇ ਆਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੈ ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਪੇਟ ਗੁਰਦਰਸਾਇਆ ਜੀਓ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਕੀ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਧਿਆਵੇ ਗਿਆਨੀ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਾ ਭੁਲਾਵਾ ਗੁਰ ਮਨ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਓ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਦਿਨਾਨਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਖਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਮਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਮਾ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰੀ ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੇ ਸਦਾ ਜਪੋ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਾਰੋ ਇਹ ਮਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਧਾਰੋ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਮਯਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ਚਲ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਮ ਜਪੇਹਾ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ਦਾਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਤਾਰਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਰਾਪੇ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਧਿਆਈ
जन्म मरण पै काटे मोहा बिनसे सोग संतापे जियो सास सास नानक सलाहे सिमरत नाम काटे सब फाहे पूरन आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजमा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावे गुण अगम अपारे गावत सुन सबे ही मुक्ते सो त्याये जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल बिख जावे मन चिंदे सही फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजिक सब सको दिए जियो नाम जप सब सुख पाइये सपो बिन से हर हर त्याये जिन सेव्या सो पार ग्रामी कार्य सगले थिए जियो आए पया तेरी सरनाई ज्यो पावे त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रभक्ति लाभो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजमा पै कृपाल गोबिंद गुसाई मेघ बरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठाड पाई कर तारे जियो अपने जी जंत प्रतपारे ज्यो बारक माता समारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल मीपुर रहा मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन स्त सदा त्याई जिखिन में सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजमा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोयन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइदा से नगर उजाड़े जियो हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की बाड़ी जियो संता से सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुर्लभ दे खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नान गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो माज महला पंजमा चरण ठाकुर के हृदय समाणे कल क्लेश सब दूर पै आने शांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बाहर रहा पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जियो अमृत वरखे अनहद बाणी मंत्र अंतर शांत समाणी तृपत अघाए रहे जन तेरे सतगुरु किया दिलासा जियो जिसका सास तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे बड़ पागी नानक पूरन आसा जियो माज महला पंजमा मिह पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी बसाया गया क्लेश पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो जिसके से तिन ही प्रत पारे पार ब्रह्म प्रपै रखबारे सुनी बिनंती ठाकुर मेरे पूरन होई काली जियो सर्ब जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महील सब तृप्ताने साधु चरण पखाली जियो मन की इच पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख पंजन रते रंग रसाली जियो माज महला पंजमा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निविरमलागा तेरी पाई कारक मामा जे तुद पामा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जू तू दे सोई सुख लहना जिथे रखे बैकुंठ तथाई तू सबना करे प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूरे पूरन होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजमा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महील दह दिस बरसाया शांत पई बुझी सब तृष्णा अनद पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नू आप प्रतपाले पै पैरी तिसे मनाई जियो जा की शरण पयांगत पाइये सास सास हर नाम ते आइये तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर सब तिसे किया जाई जियो
तेरा माण तन प्रभ तेरा तू सच्चा साहेब गुणी गहेरा नानक दास कहे बेनंती आठ पैर तुद त्याई जियो माज महला पंजमा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन बुठे सहज समाध लगी लिव अंतर सोरस सोई जाने जियो अगम गोचर साहेब मेरा घट घट अंतर वरतै नेरा सदा लिपत जिया का दाता को बिरला आप पछाणे जियो पर मिलने की एह निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिपतासे अनद खसमे कह पाणे जियो हथीं दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजमान किनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण बसे मन माही अंगीकार किया तिन करते दुख का डेरा टाहिया जियो मन तन बसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन हुए एको स्वामी आहया जियो जो किच करे सो आपे आपै बुद्ध स्याणप किशु न जापै अपने संतां नू आप सहाई पर भरम भुलावा लाहया जियो चरण कमल जन का आधारो आठ पैर राम नाम बपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो माज महला पंजमा सो सच मंदर जित सच त्याई सो हृदा सुहिला जित हर गुण गाइए सा तरत सुहावि जित वसे हर जन सच्चे नाम बिठो कुरबाणो जियो सच बड़ाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याए त्याहे जीवै जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सच सलाहन बड़भागी पाइए गुर प्रसादी हर गुण गाइए रंग रते तेरे तुद पावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थन थनंतर सच्चा सोई नानक सच त्याइए सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजमा रैण सुहावड़ी दिन सुहिला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वंज है जीवन सफल तिथाई जियो सिमरत नाम दोख सब नासे अंतर बार हर प्रभ साथे पैप परम खोया गुर पूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ बड़ ऊच पारा नौनद नाम परे भंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला देह दान नानक जन मांगे सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजमा एथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तर ओट तुम्हारी जियो रसना जप जब जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म जुए न हारी जियो नाम अवगत जन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफला एहा सफर एहा कारी जियो दृष्ट तार अपना दास सवारिया कटकट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सबिन होर दूजा नाही बाबा नानक हिम्मत सारी जियो माज महला पंजमा मंतन रता राम प्यारे सरबस दीजे अपना वारे आठ पैर गोबिंद गुण गाइए बिसरना कोई सासा जियो सोई साजन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा साधु संग त्रीजै सागर कटिए जम की फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख पेवा काम क्रोध किलविह गुर काटे पूरन होई आसा जियो पूरन भाग पै जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वस्या जिस अंतर प्रवाण गिरसत उदासा जियो माज महला पंजमा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपया बिन से आलस रोगा जियो जाके ग्रह में नवनिध हर पाई तिस मिलया जिस पुरब कमाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेसर प्रभु सबला गल्ला जोगा जियो खिन में थाप उथापन हारा आप एकंती आप सारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लहन वजोगा जियो
ਅੰਚਲਾਏ ਸਭ ਸਿਰਸ਼ਟ ਤਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪ ਜਪਾਈ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾਹ ਭਲੀ ਜਾਏ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ ਸਭ ਪਰੋਈ ਇੱਕ ਧਾਗੈ ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਊਂਦ ਕਬਲ ਜਿਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਿਨ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਪੀਠਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਕਲਮਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੈ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿਆ ਭਰਮ ਪਉ ਧੀਠਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਕੋ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੈ ਸੋ ਗੁਰਮਿਲ ਨਿਹਚਲ ਕਰਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਲਾਗੀ

0: सच्चा ठाकुर त्रि भवन मेरा, होमे कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछतावणिया, हुक्म पछाणे सु हर गुण बखाणे, गुर के शब्द नाम निसाणे, सबना का दर लिखा सच्चे, छूटस नाम सुहावणिया, मनमुख भूला ठोर न पाए, जम दरबादा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया, साकत कूड़े सच न पावे, दुबदा बादा आवे जावे, लिखिया लेख न मिटे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया, पेड़िए पिर जातो नाही, झूठ बछुनी रोवे ताही, अवगुण मुठी महल न पाए, अवगुण गुण बखसावणिया, पेड़िए जिन जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत बिचारा, आवण जाना ठाकर हाए, सच्चे नाम समावणिया, गुरमुख बूझे अकथ कहावे, सच्चे ठाकुर साचो पावे, नानक साच कहे बेनंती, सच मिले गुण गावणिया, माज महला तीजा कर पहला, करम होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए, होमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हो बारी जियो बारी, सतगुर के बलहारणिया, गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ, मंतन खोजे ता नाओ पाए, तापत राखे ठाकर हाए, गुरु की बाणी अंदिन गावे, सहजे भगत करावणिया, इस काया अंदर वस्त अनेक असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, आंदन सदा रहे रंगदा त्राता, दर सच्चे सोजी पावणिया, पापुन की सार न जानी, दूजे लागे भरम भुलाणी, नी अंधा मग न जाने, फिर आवण जावणिया,
1: सेवा दे सदा सुख पाया, होमे मेरा ठाकर आया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, मजर कबाट खुलावणिया, होमे मार मन वसाया, गुर चरनी सदा चितलाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया, जीवन बरना सब तो दे ताई, जिस लोसे तिस दे वडियाई, नानक नाम ते आए सदा तू, जमण मरन सवारणिया, माज महला तीजा, मेरा ब्रह्म निर्मल अगम अपारा, बिन तगणी तोले संसारा, गुरमुख होए सोई बूझे, गुण कै गुणी समावणिया, हो वारी ज्यों वारी, हर का नाम मन वसावणिया, जो सच लागे से अंदन जागे, दर सचे सोभा पावणिया रहाओ, आप सुने ते आपे वेखे, जिसनू नदर करे सोई जन लेखे, आपे लाए लए सो लागे, गुरमुख सच कमावणिया, जिस आप लाए सो किसे अदवाए, पूर्व लिख्या सो मिटना न जाए, जिन सतगुर मिलिया सेवट बागी, पूरे कर्म लावणिया, भेड़िए तन अंदन सुती, कंत सारी अवगणवती, अंदन सदा फिरे बिना दे, बिन पर नींद न पावणिया, ये सुखदाता जाता, हमें मार गुर शब्द जाता, से जसहावी सदा पिर रावे, सच सिंगार बनावणिया, लख चौरासी जी वाए, जिसनू नद करे तिस गुरु मलाए, किलवक काट सदा जनर मल, दर सच्चे नाम सुहाणा, लेख मांगे ता किन दिए, सौख नाई फंसू दिए, आपे बख्श ले प्रसा चाय, आपे बख्श मिलावणिया, आप करे ते आप कराए, पूरे गुर के शब्द लाए, नानक नाम ले वड्याई, आपे मेल मिलावणिया, माज मल्ला तीजा, इको आप फिरे बरछना, गुरमुख वेखे ताए मन पिना, कृष्णा तज सह सौ पाया, इको मन वसावणिया, हो वारी ज्यो वारी, इकस स्यो चित लावणिया, गुरमती मन एकद कर आया, सच्चे रंग रंगावणिया, रहो ए जग बुलाते आ बुलाया,

रंग रहे सदा रंग राधे, हर रस मंत्र सावण्या हावारी जवाड़ी पाड़बुज मन सावण्या, गुरंग बड़े हर नाम सलाहे दर सचे सोभा पावण्या, राव अलख प्यो हर रिया समाये, उपाय न किते पाया जाए, किरपा करे दास सतगुर बेटे नदरी में मलावण्या, दूजे पाए पड़े नी मुझे तिरपत माया कर लूजे, तिरपत मंदन तोटे गुर शब्दी गुर शब्दी मुक्त करावण्या, ए मन चंचल बसनावे दौदा लागे दे दे दाए, बेका कीड़ा बिक में राधा बेखी माहे बचावण्या, हाहो करे दया जनाए भाव करम करे किसाए नपाए, तो इते बार कछ नाए बख्शे शब्द सावण्या, ओमजे बजे हर बोझे नाई आंदन दोजे पाए वराई, मनमुख जन्म गया बिरता अंत गया पचो दावण्या, पैर पर

जिन्नी सखे प्रपाया जिन्नी सखे प्रपाया हो तिनके सत बलिहार नानक नानक हजी माया कर शब्द मिला मन सद।

जेत दिन दहे से तत वह कस प्रेत पकड़ चलाए दूत जम किसे न धनी पेत छड़ खड़ोते खिने मैं जसो लगा हेत हथ मरोड़े तनक पेज स्यो हुआ से तेहा बीजे सो लूणे कमा संदरा खेत नानक प्रभ सरनाथ चरण बिहोत प्रभ देत से पादो नरक न पाइये गुर रखन वाला हेत अस प्रेम माड़ा क्यों मिले हर जाए मंथन प्यास दस्तक नहीं कोई।

संत राधन साध सदा सबना का बख्शांद जियो पिंड चिन्ह साजा कर कृपा दित्यजिंद गुर शब्द आराध्य जपे निर्मल मंत कीमत कह न जागे परमेश्वर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी।

न तिपते बखाते आया सहसा इस संसार मत जमे आया जाया बिन सतगुरु बिन सतगुरु मोना टुटी सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम त्याये सुख रजा जा तुद पाया कुल उदारे अपना तह जन दी माया सोभा सुत सामनी जन हसती चतलाया श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना बिन हत्था कन्ना जीबे बाजो बोलना एव जीवत मरना नानक हुक्म पछाए के तौ खसमे मिलना महला दूजा दिसे सुनिए जानिए सौ ना पाया जाए रुला टुंडा हंदला क्यों गल लगे थाए पैके चरन कर भाव के लू सुत करे नानक कहे सियाणिया एव कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तुद तुद दूजा खेल रचाया हमें गर्भ पाए के लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे तू रख तू सब करे तेरा कराया एक ना बख्श ले गुरमति तुझे ते लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी वे नावे होर न पाया होर कार विकार है एक सच्चा

आए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंधन हर हर नाम ते आए वो आप चिट्टा को नाम से ओम दे हर हर नाम साव से तुषदाए जन नानक तस बलिहार ने जो आप जपे अब्र नाम जपाए पौड़ी एक कहंद मोह चुन खाए वन खंड बसा एक भगवा बेस कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन भोजन की आसा बिरथा जन्म गुवाए के गृह ना उदासा जम का सिर उतरे तबन मनसा तबन मनसा गुरमति का न आवे नेड़े जहां होवे दस दासा सच्चा शब्द सच मन हर कर ही मैं दासा नानक सतगुरु सेवे अपना ते आसा ते निरासा श्लोक महला पहला

पाए, कुंडा अंदर के दिन सुमल सजाए, रास कास टटर पाइए तपे ना बिल्लाए, पीसो पहुगो समाले दिचे अग जलाए, नानक मिठे पत्रे वेखो लुकाए, पवड़ी इकना मरना।

राजा मंगे देते गंड पाए पिख्या गंड पवे जा खाए काला गंड काला गंड दिया मी चोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले बोले सच कोई मोया गंड नकी सत सत होए एत गंड वरते सं

झूठाए संसार कन समझाए सच ना तरे प्या तंदे लताए काल बुरा वह खाल सिस से दुनिया ये हुक्मे सज्जन दार मारे दाए आपे दे प्यार मन बसाए मोत न तसा भिन परिये पाए गुर प्रसादी भुज सच समाए श्लोक महला पहला तुम्मी तुम्मा वैसे अकत धुरा निम फल

सुखानय आवत चीत सदा सदा सिमर हो प्रभ स्वामी मिल नानक प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारे कर कृपा प्रभ लय निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूर्ण सब सोए रहो महातपत सागर संसार प्रभ खिन मैं पार उतारण हार आनक बंधन तोरे नहीं जाए सिमरत नाम मुक्त फल पाए रह ओकत सियाणप इसते कछु नाहे कर कृपा नानक गुण गाए गौड़ी महला पंजवा तिथि पाई हर को नाम विचर संसार पूर्ण सब काम वड्याई हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देह सो पाइय रहो हर कह चरण हृदय व्रत हार पव सागर चढ़ उतर सपार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख न होए प्रेम भगत पज कुड़ी निधान नानक दरगह पाइय मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत परम विनाश गह गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कह सिमरन जाम नहीं दरुआ रहा चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का हुआ नास आसा मार तहर तनेक साचे सह की मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ कौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मंजन कर सूचे कोट ग्रह पुन सफल मूचे रहो हर के चरण हृदय में वसे जन्म जन्म के किल वेख नस सासंग कीर्तन सासंगत कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बज कर्म गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सुनाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते पै पंजन प्रभ मन न बसाई पै पंजन मन पै पंजन प्रभ मन न बसाई डरपत जन्म बहु जाई रहो जाके हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरहा मृत जस बास सो समरथ सिमर सास ग्रास मी सा

देख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर स्यो राता लोभी आनंद करे पेख तना जन चरण कमल स्यो लागो मना विसरनाई एक तिल दा तार नानक के प्रा प्राण आधार गौड़ी मल्ला पंजवा राम

सतगुर प्रसाद। राम को बल पूरन पाई, ताते व्यर्थन व्यापै काई राम। जो जो चित पै दास हर माई, सो सो करता आप सा आप कराई। निंदक की प्रापत गवाई, नानक हर गुण निरपहौ गाई। गौड़ी महला पंजमा। भोज बाल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त पार्त ग्रह लेहो अंगूरिया रहाओ। सुवर्ण सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटन पुंगरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता बहतरिया। चरण कमल हृदय गौ नानक, पहसागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजमा। एक क्यों कार सतगुर प्रसाद, दया गुसाई शीतला तू संग हमारे। बाह जियो रहो तुद बिन करी न जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदात्या निमख निख बलिहार जी। हस्त बलवंत देह प्रभाव, घातो उद्रो गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदा ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे संभला, कवन विधि विचार। सरण समाई दासित ऊंचा आगम पार। सकल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नामा रस माहे। सो प्रसन्न पह केसवा, से जन हर गुण गाए। मात पिता सदबंद पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। राग गौड़ी बैरागण, सो है कै छंद कै घर। महला पंजमा। एक क्यों कार सतगुर प्रसाद, है कोई राम प्यारो गावै। सर्व कल्याण सुख सच पावै राउ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, वेले काऊ एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड पागी, पार ब्रह्म सन कहाद चाहे। चाहे जोगी जति सिद्ध हार आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि सरन जिन विसरत नाई, बडपागी हार संत मिलाई। जन मरण तह मूले नाई, कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे। बिनु सुनो प्रभु उच पारे, नानक मांगत नाम अधारे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई राओ। रूपहीन बोध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब न जोबन माती, मोहे नाथ की करो समाई। खोजत खोजत पही बैरागण, प्रभ दर्शन को हो फिर तहाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मिर जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा। प्रभ मिल बै को प्रीत मन लागी, पाए लागू मोहे करो बेंती। कौ संत मिले बट भागी राहु, मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी। जो प्रभ की हिर कथा सुनावै, अंदर फिरो तिस पीछे बैरागी। पूर्व कर्म आंकर जब प्रगट है, पेट्यो पुरख रिस्क बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गौड़ी महला पंजवा। निकस रहे पांखी सिमरत हर पाख, मिल साधु सरन कहो नाग। कहो पूरन राम रतन हीरे, संग राख रहो परम की कोई तृष्णा। रस पंकज अत तीखण मोह की फास, काटन हार जगत गुर गोविंद। चरण कमल ताँ कै करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम। दीना नाथ सुनो अरदास, करो ग्रहो लेहो नानक के स्वामी। जियो पिंड सब तुरी रास। गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चित व्यो दिन रहनी। है कोई संत मिलावै नेरा राउन, सेवा करो दा दासन की। अनक भांत तिस करो निहोरा, तुला तहार तोले सुख सगलै। बिन हार दास सबो है थोरा, संत प्रसाद गाए गुण। गुण सागर जन्म जन्म को जात बेहोरा, आनंद सुख भेटे हर नानक। जन्म कृतार्थ सफल सवेरा। गौड़ी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा। एक क्यों कार सतगुर प्रसाद, किन बद मिले गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मोहे मार्ग देहे बताई राउ। अंतर लख न जाई लिखिया, विच पढ़दा हुमे पाई। माया मोह सबे जग सोया, ए भरम कहो क्यों जाई।
एका संगत एक ग्रह वस्ता मिल बात न करते भाई एक वास्त बिन पांच दुहेले ओ वास्त अगोचर ठाई जिसका ग्रह तिस दिया ताला कुंजी गुरसों पाई अनेक आनक पाव करे ने पावे बिन सतगुर की सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर ते सत्संगत लिवलाई पांच जना में मंगल गाया हर नानक भेद न पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज पहा परम खिन में नाठा मिल ज्योति जो समाई राव दूजा गोड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ ले सतगुर मुझे बतायो राव जद कद पेक्यो ताता तुम ही मोहे विश्वास होए आयो कह पह करु अरदास बेनती जहो सुन तो है रघुरायो लहो सहसा बंधन को तोरे ता सदा सहज सुख पायो हुना सो होई फन होसी सुख दुख कहां दिखायो खांड ब्रह्मांड का एको ठाना गोट पर्दा खोल दिखायो नौ नद नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठे जायो एको कानक आनक पहाद साजी बहु प्रकार चायो कौ नानक परम को खोई है इं तत्ते तत् मिलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटे दिन सो रहनारे मन गुर मिल काज सुवारे रहाओ करो बेंती सुन मेरे मीता सन टहल की बेला इया खाट चलो हर लाहा आगे वसन सेला ए संसार बेकार संसेह में है तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगावे प्यावे ए रस कत कथा तन जानी जा को आहे सोई बिहाजो हर गोटे मने वसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे बहु न होए गो गोफे सहज निज हर महल पाओ सुख सहजे।